0: ये है लाइका गोल्ड।
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 02023963 5757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड।
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
4: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: Packed for the trip? Gifts? Passport?
6: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
5: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
6: Simzy?
5: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
7: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
8: रात भर न थमे न रुके क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर

0: ये है लाइका गोल्ड
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
0: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
0: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
0: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50 प्लस एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
1: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट 711,000 पाउंड्स
0: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
0: In Dubai.
2: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
3: Atif Aslam live in the UK.
4: Oh, Julilal Kalandar, mast, mast, da, mast, kalandar, mast.
2: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
3: Book your tickets now at AXS.
2: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
3: Exclusive radio partner, Leica Radio. Are we there yet?
5: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
6: Relax, I've booked the Uber already.
5: How? My roaming isn't even working yet.
6: I switched to Simsy before we left London.
5: Simsy? Since when are you the tech expert?
6: Since I decided I want a stress-free holiday.
7: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
8: T's and C's apply.
9: क्लासिक नगमे
10: आपके अपने लाइका गोल्ड पर

0: ये है लाइका गोल्ड लोकेशन लोकेशन लोकेशन
1: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
0: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियल अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
1: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
0: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
1: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50 प्लस एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
0: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
1: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02 03963 5757 Greens by Danube Prime location
0: High appreciation
1: In Dubai
2: 3 days to go Only 3 days left. Arthur Aslam is all set to take over the O2 on the 14th of June. Don't miss it. Tickets available at AXS. Exclusive radio partnership, Leica Radio.
3: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
4: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
3: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
4: And you didn't pay those massive roaming charges?
3: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
5: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
6: 7 stations. 1 podcast. 1 mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
7: रात भर न थमे न रुके क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर

0: गंगा राम से ना अखियां मिलाना गोरी, गंगा राम से ना अखियां मिलाना, मिलाना है तो दिल को मिला,
1: लगाना है तो गले से लगा,
0: मिलाना है तो दिल को मिला।
2: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

जान, हमने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, अब अगर तुमने बेवफाई की तो खुदा कसम हम इन्हीं लहरों में डूब मरेंगे।

0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Why fans shout at football matches?
4: Oh, wake up!
3: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
5: Packed for the trip? Gifts? Passport?
6: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
5: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
6: Simzy?
5: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
7: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
8: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

गावे को गुण वडियाईया चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लय फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा दूर।

मैं विसर ना जाए जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले जे तिस नदर ना आवे।

जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पथ्यों प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध।

होए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहाँ विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख भाव, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहावी।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भाव।

तेरे भगत रसाले और केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होश

वाजिब तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साहब नानक रहन जाई।

कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एको वेश एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख लख।

जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवै निशान, कच पकाई उथे पाए, नान गया जापै जाए।

0: Like a gold. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
1: विजिट travelhubworld.com.
2: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
3: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
2: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
3: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है? इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24 Line.
5: Mom, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
6: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
5: So where do we find something like that now?
6: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic Premium and made the way our eldest used it.
7: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
8: Can love really be lost? Can home be taken away from someone's heart?
9: ये प्यार जहर की तरह होता है, पता? तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता.
10: मन है इश्क मस्ताना.
8: मैं वापस आऊंगा. A film by Imtiaz Ali.
9: अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना, जिसे 78 years से देखा तक नहीं.
8: Starring Diljit Dosanjh, Vedanga Reina and Sharvari. Music by A.R. Rahman. Produced by Birla Studios and Applause Entertainment. Main Vapas Aunga in cinemas on the 12th of June.
11: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
12: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश. एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को, स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course लंच सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
13: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
14: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
13: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
15: Be part of a historic grand opening.
16: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
17: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
16: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
17: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
18: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
19: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
20: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Chahe Europe ho ya duniya ka dusra kona, har trip feel hota hai the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: Track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Leica Gold, Traffic and Travel.
2: Good morning, this is Cameron McGarvey here. The A406 North Circular southbound at Barking remains closed due to the broken down lorry at the Barking flyover. Congestion to the M11 and joining up with queues at the Redbridge flyover as well. Very, very slow this morning. London Heathrow Airport, A4 Bath Road. We've got traffic light failure at Nene Road. Traffic is coping fairly well though. Whittier Road at Manor Park, still partially blocked at the Forest Drive with a broken down car. Public transport wise, we've got issues on the Victoria line due to a track fault at Walthamstow Central. Severe delays this morning, and also got delays on the Metropolitan line after an earlier faulty train. That's your latest traffic and travel.
3: It's Righty here, and I'm already loving this glorious summer of football. And while the players know they need to fuel themselves properly for the big games, we need to eat well too. Now, M&S, one of the official partners of our amazing home nations football teams, have created Eat Well. Loads of snacks, meals and drinks that help us all be that little bit healthier. And not only that, it's mega easy to spot because every pack has a little flower that tells us all we need to know. And because it's M&S, it is, of course, delicious. So, just follow the flower.
0: Yeah.
4: Like a gold.
0: Like a gold.
5: बोले तू ये क्या कर रहा है रे?
6: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
5: ये तो बताओ, कोई पता चला?
6: गुरु गुरु,
7: इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून.
5: साधु, तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
8: शीघ्र शीघ्र.
7: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून. टू बुक कॉल 0208 514 5400. बुक ऑनलाइन एट Eventbrite.
0: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर Leica Gold. Step into the new grand showroom of Gajos Couture, Southall.
1: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
0: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
1: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajos Couture, now open 7 days a week.
0: Gajos Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
9: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
10: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
11: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
12: It's India versus Pakistan and this is India's lineup.
13: इस जून FIH Hockey Pro League लेकर आ रहा है स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी राइवलरी लंदन में. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लाइव एट ली वैली हॉकी एंड टेनिस सेंटर. हाई स्पीड एक्शन, हाई इंटेंसिटी मोमेंट्स, बिल्कुल अनमिसेबल. अपने टिकट्स अभी बुक करें एट englandhockey.co.uk. India versus Pakistan, London, 23rd or 26th June. Be there.
12: So India looking to press home that advantage. There's a chance.
14: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
15: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
14: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
15: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915, or visit cashbackremortgage.co.uk.
14: Cashback Remortgages, your mortgage should work for you.
16: 105 super hit shows pachi have London ma aavi rahyu che ek dhamakedar international Gujarati comedy Jay's Entertainment laine aavi rahya che Sakhna Rejo Husband ji, Leena Shah ane Sameer Shah sathe hasya ni full guarantee. Fridays 26 June 27 Patidar Samaj, Wembley Park ma ratna 8 vage. Tickets booking mate visit विजिट करो eventbrite.co.uk, कॉल करो वीडियोरामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655।
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड, और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
17: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस माँ भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मड़शे शांति भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो। डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज। कॉल करो 02037736333। मंत्रा हॉलिडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
18: Women's World Cup starts tomorrow. Catch updates by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
19: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. RoboThink.co.uk/Leica.
20: Gold Breakfast with Kajal.

0: होशियार।
1: गुड मॉर्निंग। मनोरंजन की दुनिया में स्वागत है संगीत प्रेमियों का। थैंक्स टू काजल, शील बी बैक टुमारो मॉर्निंग। माय नेम इज रवि शर्मा, आई एम विद यू टिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून। और इस समय ब्रिटिश घड़ियों में सुबह के 10:04 हुए, साहब 5 मिनट हुआ ही चाहते हैं। जुड़ जाइए मेरे साथ। भाई आज बृहस्पतिवार है, थर्सडे, वर्ष 2026 के जून महीने की 11 तारीख। और भाई थर्सडे को हम अपनी भड़ास निकालते हैं, वो जो क्या कहते हैं दर्द भरे जज्बात अभिव्यक्ति पाते हैं, होठों पे आते हैं, वो शिकवे शिकायत, वो परेशानियाँ, वो बिछोड़े, वो दर्द भरे अल्फाज, और भाई वो उदासी के अंदाज। शिकायत करें किससे करें, अपने आप से या फिर अपने उस बाप से, ऊपर वाले से, या फिर किस्मत से, या फिर टूटी हुई मोहब्बत से। हर उसूले बंदगी को आजमाया आज तक, दिल तेरा हम पर न आना था न आया आज तक, खुद को भी तेरी जफा का शक नहीं होने दिया।

0: देख तेरी, जफा का शक नहीं होने दिया, कितनी सादगी से हमने धोखा खाया आज तक। हर खुशी जानी अधूरी आज तक तेरे बगैर, गम कोई भी हो अकेले ही उठाया आज तक। अगर कभी फुर्सत मिले कुछ पल अकेले बैठकर, सोचना तुमने हमें कितना सताया आज तक। वक्त आखिर है मना ले हसरतों का वास्ता, एक दफा भी तो नहीं तूने मनाया आज तक। ढांप दे झूठी वफा के कफन से गर हो सके, तेरे दर पे उम्र भर ये सर झुकाया आज तक। मैं जो नहीं कह पाया आज तक होठों पे लाया आज।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: TravelHub.
2: At all protected.
1: Leica. This is Leica Gold. Non-stop classics.
0: हर उसूले बंदगी को आजमाया आज तक. दिल तेरा हम पर ना आना था ना आया आज तक. हर खुशी जानी अधूरी आज तक तेरे बगैर, गम कोई भी हो अकेले ही उठाया आज तक। पर आज भरी महफिल में कह दें, वो जो नया कह पाया मैं आज तक, सब सुन ले।

0: बहुत कम गीत हैं फिल्मों में जब लता जी और आशा जी ने सुर मिलाए हैं और भाई वो गीत गाए हैं। और एक गीत तो ऐसा भी मैं कभी कभी सुनवाता हूँ जिसमें लता जी, आशा जी और उषा जी ने भी आवाज़ शामिल करवाई है, वो भी सुनवाएंगे। लेकिन भाई आज दर्द भरे गीतों को थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन देना है, इसलिए जब जब तुम्हें भुलाया तुम और याद आए, होता है ना ऐसा, आप किसी को भुलाने की कोशिश करते हैं और भुलाने के बहाने ही उसे और ज्यादा याद करते हैं। क्या कर रहे हो? क्या उन्हें भुलाने की कोशिश कर रहा हूं? तुम्हें भुलाने की कोशिशें भी तमाम नाकाम हो गई हैं। किसी ने जिक्र वफा किया तो जुबां पे तेरा ही नाम आया। किसी के हिस्से में प्यास आई तो किसी के हिस्से में जाम आया। भाई आज थोड़ा सा ये रंग भी गीतों का स्वीकार कीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा ज़रूर, क्योंकि ज़िंदगी की कड़वी सच्चाइयों से मुलाकात करते हुए आगे बढ़ेंगे हम। बहन भाइयों, हर किसी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब ये गीत बहुत अपने अपने से लगते हैं। खैर साहब, बृहस्पतिवार जून महीने की 11 तारीख और आज लेट्स फाइंड आउट के पाउंड का रेट क्या चल रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. आज एक पाउंड के बदले कितने पैसे दे रहे हैं नोट कीजिए भाई। Today is the rate at this time 127.6 rupees. 127.60 रुपये का रेट चल रहा है। दैट्स द मैक्सिमम अधिकतम वो दे रहे हैं एक पाउंड के बदले। लेकिन साथ में कुछ और भी तो है ना, सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन ए 75 pounds वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 pounds। ऑल्सो 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds। यस, बट TNC अप्लाई, रिमेंबर दैट।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: फुटबॉल का जिक्र करें भाई, आज तो वर्ल्ड कप फुटबॉल शुरू हो रहा है, तैयार हैं आप भाई? वैसे तो हमारी तरफ जो लोग हैं ना वो क्रिकेट के इतने दीवाने होते हैं कि उनसे पूछे भाई क्या रिजल्ट रहा, ब्राज़ील का कैसा रहा, कहते हैं भाई कितने रन से जीता ब्राज़ील आज। फुटबॉल में रन नहीं होते भाई, हालांकि रन करते हैं, भागते दौड़ते हैं गेंद के पीछे। कभी कभी सोचते हैं एक ही गेंद के पीछे इतने सारे खिलाड़ी भाग रहे हैं, भाई एक एक सबको लेके दे दो। लो जी, फुटबॉल वर्ल्ड कप वेरी चर्चित और कहते हैं बहुत बड़ा वर्ल्ड कप, हिस्ट्री में इतिहास में सबसे बड़ा अब तक जितने मैच खेले गए हैं वर्ल्ड कप के, तो भाई ये सबसे बड़ा आयोजन होगा, आज से शुरू हो रहा है और आज मेक्सिको में जो है ओपनिंग मैच होगा, ओपनिंग सेरेमनी भी होगी और भाई पहला मुकाबला मेक्सिको वर्सेज साउथ अफ्रीका मैच खेला जाएगा। 48 टीमें इसमें भाग ले रही हैं और भाई ये अमेरिका, कैनेडा और मैक्सिको में कई ग्राउंड्स में खेला जाएगा, अलग अलग जगह पर अलग अलग टीमों की भिड़ंत होगी। 19 जुलाई को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा और 19 जुलाई तक लगातार हम आपको जोड़े रखेंगे फुटबॉल ग्राउंड्स से, टीमों से, हार जीत के फैसलों से, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Leica Gold.
4: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
5: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
6: Keep it fun with PlayOjo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
4: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
5: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
7: Feel the fun. PlayOjo.
6: 18 plus, gamble aware. Sadco.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: और लीजिए साहब, ब्रिटिश घड़ियों में 10:30 बज चुके हैं, समय हो गया है समाचारों का। और भाई समाचारों में यहाँ तो बेलफास्ट की खबरें ही ज़्यादा छाई हुई हैं। यूके में तो बेलफास्ट में कल रात भी प्रोटेस्ट जारी रहे और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया प्रोटेस्टर्स के ऊपर। बेलफास्ट में उस घटना को लेकर के अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं जिसमें एक व्यक्ति पर जो है चाकुओं से वार किया गया और एक सूडानी मूल के सिटीजन को गिरफ्तार भी किया गया है इस मामले में, और भाई उन्हें कोर्ट में भी पेश किया गया। लेकिन प्रोटेस्ट का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। बेलफास्ट में विक्टिम्स फैमिली फोर्स टू गिव अपडेट ऑन कंडीशंस ड्यू टू डिस्ट्रेसिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, झूठी खबरें अफवाहें भी जो हैं वो फैल रही हैं। इसके अलावा भाई यूरोप की सबसे बड़ी एयरलाइन ने इन्वेस्टिगेटेड ओवर चार्जिंग पेरेंट्स टू सिट विद देयर चिल्ड्रन, माता पिताओं को बच्चों के साथ बैठने के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और आज से फुटबॉल का महाकुंभ शुरू हो रहा है और भाई फुटबॉल के मैचेस के साथ, खिलाड़ियों के साथ, टीमों के साथ, उनकी जीत हार के साथ हम आपको जोड़े रखेंगे। लेकिन साहब आज की चिंतन में भी हम किए एक फुटबॉलर का जिक्र करेंगे, सुनते रहिएगा। फिलहाल आइए देखते हैं क्या कुछ है आज के प्रमुख समाचारों में। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। ओमान में भारतीय एम्बेसी ने वहां के शिनास पोर्ट पर एक जहाज पर हुए ताजा हमले के बारे में जानकारी दी है। इंडियन एम्बेसी ने लिखा है कि हमें आज ओमान के शिनास पोर्ट के पास एक जहाज से जुड़ी घटना के बारे में पता चला है। हम हालात पर करीब से नजर रखे हुए हैं और आगे की जानकारी के लिए लोकल अफसरान के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। इससे पहले बुधवार को भी इस इलाके में भारतीय तेल टैंकर पर हमला हुआ था। पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज बताया है कि ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर पर अमरीकी फौजी हमले के बाद लापता हुए 3 भारतीय नायिकों की डेड बॉडीज मिली हैं। भारत ने अमेरिका के मिशन प्रमुख को तलब किया है और हमले के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया है कि आज सुबह सुबह IRGC की एयरोस्पेस फोर्स और नेवी के लड़ाकू हवाई जहाजों ने अमेरिकी फौज की उकसावे की कार्रवाई का जवाब दिया है। ईरान की इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कुवैत आर्मी के जनरल स्टाफ ने यह ऐलान किया है कि एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हवाई टारगेट को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। भारत से आने वाली खबरों में TMC के 3rd राज्यसभा सांसद का इस्तीफा। प्रकाश चिकबड़ाइक ने अपने फैसले पर यह कहा कि तृणमूल कांग्रेस से वो अपना भाई इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन साहब ये पार्टी छोड़ने का सिलसिला चल रहा है और नाम आया है शत्रुघ्न सिन्हा का भी। आपको बता दें कि TMC पार्टी यानी ममता बनर्जी की पार्टी से ही शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपने कार्यकाल का सबसे लंबा जो समय है वो पूरा करने पर बधाई दी है। तो TMC के लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पार्टी से बगावत की खबरों के बीच शत्रुघ्न सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री मोदी को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर 12 साल का कार्यकाल पूरा करने पर मुबारकबाद दी है। शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से TMC के लोकसभा सांसद हैं, पर सुनने में आया है कि वो भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ सकते हैं या छोड़ रहे हैं। पटना हाई कोर्ट ने फैजल खान उर्फ खान सर ने एक याचिका दायर करके अपने ऊपर दर्ज FIR को निरस्त करने की मांग की है। भाई ये फैजल खान, अगर आपने भारतीय खबरों पर नज़र जमाए रखते हैं और आपने इनके बारे में जानकारी रखी है, तो खान सर ये बच्चों को जो है एग्ज़ाम के लिए तैयार करवाते हैं, बड़े बड़े एग्ज़ाम्स के लिए IAS IFS और भाई ये बहुत मशहूर हैं अपने काम के लिए, लेकिन अभी इन्हीं के उस ट्रेनिंग सेंटर पे एक गोलीबारी की घटना के बाद इनके खिलाफ जो है वो FIR दर्ज कराई गई है। कल सुनवाई होनी है उस पर। 2 जून को तकरीबन 10:30 बजे मुसलहट हॉट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज़ पर अटैक हुआ था, जिसमें कोचिंग सेंटर के गार्ड चुन को चोटें आई थी और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। उसी सिलसिले में इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। एक और खबर, कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने उनका नामांकन रद्द किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। राज्यसभा की मेंबरशिप के लिए भाई उन्होंने नामांकन भरा था, वो किसी टेक्निकल आधार पर रद्द कर दिया गया है और इस फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उस पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। राज्यसभा का चुनाव भाई थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है, डायरेक्ट नहीं होता। राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं वो चुने हुए मेंबरों के द्वारा चुने जाते हैं, यानी MLAs MPs वो चुनते हैं। और अगर मीनाक्षी नटराजन का ये नामांकन रद्द होता है तो फिर 3 मेंबर पार्लियामेंट में राज्यसभा में BJP के जो है वो निर्विरोध चुने जाएंगे। ईरानी संसद के राष्ट्रीय सिक्योरिटी कमीशन के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि हम हारने वालों से लड़ने से नहीं डरते हैं, इस बार अगर लड़ाई होगी तो वो लड़ाई किसी एक इलाके तक लिमिटेड नहीं रहेगी, यानी बहुत व्यापक होगी, दूर तक उसके जो है असरात महसूस किए जाएंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि ट्रंप के बताए आंकड़ों के मुकाबले मारे गए ईरान में या घायल हुए अमेरिकियों की संख्या पहले से कहीं ज़्यादा है और ये तादाद और बढ़ेगी। उन्होंने लिखा कि इस बार ये जंग सिर्फ इसी इलाके यानी खाड़ी तक लिमिटेड नहीं रहेगी, देखते हैं क्या होता है। उधर बहरीन ने वहाँ की होम मिनिस्ट्री ने नागरिकों से सुरक्षित स्थानों पर जाने का आग्रह किया है। बहरीन की होम मिनिस्ट्री ने एक संदेश में अपने सिटीजन से कहा है कि शांत रहें और जहां तक हो सके अपने नज़दीक के सिक्योर प्लेसेस पर जाकर के जो है ठिकाना बनाएं। आज सुबह अमेरिकी हमलों के 1 घंटे के बाद ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसियों ने देश की फौज के हवाले से कहा कि बहरीन में अमेरिकी फौजी ठिकानों पर हमला किया गया है। अमेरिका ने कहा है कि उसने ईरान में कई जगहों को निशाना बनाकर हमले का जवाब दिया है। ईरान में युद्ध का प्रबंधन कर रहे खातम अल अनबिया हेडक्वार्टर ने अमेरिकी हवाई हमलों के नए दौर के 1 घंटे के बाद यह बयान जारी किया है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
2: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।
3: लौट आइए संगीत की ओर और निकल के बाहर आइए दुख दर्द भरे गीतों के दायरे से। भाई सेलिब्रेशन भी तो होते हैं, जन्मदिन भी तो होते हैं, शादी की सालगिरह भी तो मना रहे हैं कुछ लोग, तो थोड़ा सा सेलिब्रेशन वाला रंग भी गीतों में जोड़ देते हैं, यानी गीतों का रुख मोड़ देते हैं। अगर आपके घर में परिवार में किसी का जन्मदिन है तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। वैसे आज जन्मदिन मनाने वालों में कई नाम ऐसे शामिल हैं भाई जिन्हें याद करने को जी चाहता है। एक तो भाई बड़े सम्मान से मैं उनका नाम लेना चाहता हूं, राम प्रसाद बिस्मिल आज ही के दिन जन्मे थे। और भाई बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव भी आज ही के दिन जन्मे थे 1948 में।

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
1: Holiday breaks are brought to you by South Hall Travel.
2: और साउथ होल ट्रैवल का पैगाम आपके नाम भैया दिला रहे हैं कि इन गर्मियों में छुट्टियां बिताइए, साउथ होल ट्रैवल के साथ घूम कर आइए, एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स और मोर विद हॉलीडेज डील्स दैट इंक्लूड फ्लाइट्स, होटल्स एंड एट ऑल प्रोटेक्शन। भाई 40 वर्षों से ज़्यादा का भरोसा, ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड के विजेता हैं साउथ होल ट्रैवल। कॉल देम ऑन 0208-574-8410।
1: Breaks were brought to you by South Hall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
3: Ye hai
4: Like a Gold
2: TravelHubWorld.com. Kamyabi ke shandar 22 baras celebrate kar rahe hain by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays humse sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
5: TravelHub, best service with unbeatable price.
2: At all protected.
5: Visit TravelHubWorld.com.
6: Hi, मैं हूँ अश्विन।
7: लोकेशन,
6: मुझे लाइक
7: फॉर रेडियो लेफ्ट एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विन।
6: ग्रीन फीचर्स मेरे इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ
7: टाउनहाउसेस एंड विलास
8: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई एप्रिसिएशन।
7: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन
9: फर्निशिंग्स। कैच मी ऑन माय शो कॉल्ड आफ्टरनून्स विद रिव्यूज एंड सुनी बाबा मास्टर कमल आधारित गाने ऑन लाइक अ गोल्ड एंड लाइक अ रेडियो मिडलैंड्स फ्रॉम 1 पीएम टू 711,000
7: पाउंड्स।
8: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
7: High appreciation.
8: In Dubai.
1: Herald. New World Online. Eco-friendly disposables. For restaurants, cafes, caterers, food takeaways. Available in Greater London. On 10:35 PM. 2025 catalog today. Call on 0208-507-7900. Or download the catalog from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables. For restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
10: 105 super hit shows pachi have London ma aavi rahyu che ek dhamakedar international Gujarati comedy Jay's Entertainment laine aavi rahya che Sakhna Rejo Husband ji, Leena Shah ane Sameer Shah sathe hasya ni full guarantee. Fridays 26 June 27 Patidar Samaj Wembley Park ma ratna 8 vage. Tickets booking mate visit karo eventbrite.co.uk, call karo Videorama athwa call karo Mr. B 07860-280655. Sakhna Rejo Husband ji.
11: Are we there yet?
12: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
11: Relax, I've booked the Uber already.
12: How? My roaming isn't even working yet.
11: I switched to Simsy before we left London.
12: Simsy? Since when are you the tech expert?
11: Since I decided I want a stress-free holiday.
13: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
11: T's and C's apply.

0: दिस इज लाइक अ गोल्ड।
1: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
2: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
3: ये तो बताओ, कोई पता चला?
4: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
5: तो शुभकामनाएं, देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
3: शीघ्र शीघ्र।
4: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
0: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
6: Selling your car can be super simple if you choose We Buy Any Car, because they sort out any outstanding finance for you. Just bring along your final settlement agreement. If only they could make parallel parking simpler. To the right a bit, mate. Yeah, back. Back a bit. Bit more. Oh, no, too far. We Buy Any Car. Selling made simple. To sell your car today, enter your reg number now at webuyanycar.com.
7: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
8: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
9: It's India versus Pakistan and this is India's lineup.
10: इस जून FIH हॉकी प्रो लीग लेकर आ रहा है स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी राइवलरी लंदन में। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लाइव एट ली वैली हॉकी एंड टेनिस सेंटर। हाई स्पीड एक्शन, हाई इंटेंसिटी मोमेंट्स, बिल्कुल अनमिसेबल। अपनी टिकट्स अभी बुक करें एट englandhockey.co.uk। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लंदन 23rd और 26th जून। Be there.
9: So India looking to press home that advantage. There's a chance.
11: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
12: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
11: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
12: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
11: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
12: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
11: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
13: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
14: No more worries for me.
15: Southall Travel, at all protected.
16: Location, location, location.
17: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
16: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
17: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
16: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
17: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
16: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
17: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
16: high appreciation
17: in Dubai.
18: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
19: 25? Seriously?
18: Sounds like Ojo time.
19: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bash Bonanza, plus instant payouts on winnings.
18: Sorry about the wait. How can I help?
19: You can help me celebrate. I won.
20: Feel the fun. Play Ojo.
21: First deposit only. Most wins are instant. 18+. Gamble aware. T's and C's apply.
22: London में एक महान धार्मिक अवसर, Unity in Divinity presents Mahasom Yagya, 14th से 21st June, Woodlands Stanmore के Temple Grounds पर. Free entry. सपरिवार अवश्य पधारिए. रोज सुबह 10 से 3 बजे तक यज्ञ और 4 से 7 बजे तक मनोरथ, फॉलोड बाय महाप्रसाद. आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वॉलंटियर बनना चाहते हैं या यज्ञ सेवा लेना चाहते हैं, तो आज ही रजिस्टर करें. वेन्यू टेंपल ग्राउंड्स, वुड लेन, स्टैनमोर, HA7 4LF. फॉर मोर डिटेल्स डिटेल somyagna.com कॉल 07932623852.
1: धार्मिक आस्था अने भक्ति साथे जोड़ावानो सुंदर अवसर माँ कृपा फाउंडेशन यूके लईने आवी रह्यु छे श्रीमद भागवत सप्ताह 7 जून थी 13 जून 2026 सुधी रोज बपोरे 3 वाग्या थी सांजे 6 वाग्या सुधी कथा वाचन करशे श्री विपुल कृष्ण शास्त्री जी जूनागढ़ वाला वेन्यू फर्स्ट फ्लोर यूनिट 210 स्टोनफील्ड वे साउथ राइसलीप HA4 0JS. रोज सांजे 6 वाग्या पछी प्रसाद नी व्यवस्था रहेशे डोनेशन अने वधु माहिती माटे कॉन्टेक्ट करो रश्मिशा 0777-228-7509.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. टीज एंड सीज अप्लाई.
5: मनोरंजन विद रवि शर्मा. Across Greater London, this is Leica Gold, 10:35 AM, DAB and online, a part of the Leica Radio Network.
23: The top stories this hour. Violent disorder in Belfast has been described as racist thuggery by the Northern Ireland Secretary. Hilary Benn says ethnic minorities are living in fear after families were forced from their homes by masked gangs. Violence flared following a protest about knife attack in North Belfast on Monday. Deputy First Minister Emma Little-Pengelly says politicians need to listen to protesters' fears.
24: What we're seeing clearly right across the UK is this bubbling anger and frustration about particular issues, in this case in relation to immigration. I have been very, very clear that it is incredibly important for people that they feel that politics is working for them.
23: Hopes of an imminent peace deal to end the Iran war have been further shaken after a new round of U.S.

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम में। दिस इज लाइका रेडियो नेटवर्क, लाइका गोल्ड के कार्यक्रमों में। भाई ये समय चिंतन के लिए निश्चित है। आज का विचार, थॉट फॉर द डे। और बहन भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, आज से वर्ल्ड कप फुटबॉल के मुकाबले शुरू हो रहे हैं। वैसे भाई महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की भी तैयारियां चल रही हैं, वो भी शुरू होने वाला है। खेलों के साथ हम आपको जोड़े रखते हैं। इसके अलावा गीत संगीत सूचनाएं समाचार सभी कुछ तो होता है लाइका रेडियो नेटवर्क पर बात फुटबॉल की हो रही है। वर्ल्ड कप फुटबॉल 2026, कब कब मैच होंगे, कहां कहां खेले जाएंगे, कौन कौन सी टीमें आमने सामने हैं, ये जिक्र तो हम करेंगे। पर आज के चिंतन में हमें भारत से भगवान दास जी ने एक आलेख भेजा है चिंतन के लिए। और वही जिक्र है एक फुटबॉल खिलाड़ी का, दुनिया का बड़ा प्रतिष्ठित खिलाड़ी है ये। बच्चा बच्चा उनके नाम से परिचित है। जो फुटबॉल में दिलचस्पी नहीं रखते हैं वो भी जानते हैं उसको, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और भाई उनके बारे में आज भगवान दास ने लिख के भेजा है कि वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, कोई भी भाई फुटबॉल का मुकाबला हो इस खिलाड़ी का जिक्र तो होगा ही होगा, लेकिन फुटबॉल के लिए नहीं, एक और काम के लिए। भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो खुद लिखते हैं, खुद कहते हैं कि फुटबॉल ने मुझे बहुत पैसा दिया, इतना कि मैं सोच रहा था कि मैं अपने और अपने परिवार के लिए एक प्राइवेट जेट खरीद लूं, प्राइवेट हवाई जहाज। यस आई कैन अफोर्ड इट। 60 मिलियन का एक हवाई जहाज, 60 मिलियन यूरो का एक हवाई जहाज देखा, पसंद किया, कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो गया और मैं कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने ही वाला था। रोनाल्डो कहते हैं कि मैं अपने परिवार के लिए ये हवाई जहाज खरीदूं, खरीदने वाला था। यार दोस्त कह रहे थे यू डिजर्व इट क्रिस्टियानो, यू शुड हैव योर ऑन प्लेन। परिवार भी खुश था। लेकिन फिर शाम को एक घटना घटी। मैं अपनी मां के पास

बैठा था, जिक्र किया तो मां ने मुस्कुरा के कहा, जानते हो बेटा, जब मैं छोटी उम्र की थी ना, तो स्कूल जाने के लिए पीठ पर बस्ता लादे मैं 10 किलोमीटर पैदल जाया करती थी। तुम तो हवा में उड़ने की बात कर रहे हो, पर उस जमीन को कैसे भूलें जिसे जुड़ करके हम यहां तक पहुंचे। भाई, क्रिस्टियानो की मां ने बताया कि मैं 10 किलोमीटर तक पीठ पर बस्ता लादे स्कूल जाया करती थी, इतनी दूर स्कूल था। सुना और भाई रोनाल्डो परेशान हो गए, कहते हैं उस रात पूरी रात में सो नहीं पाया। फिर सुबह उठा तो जानते हैं पहला काम क्या किया उन्होंने। उठते ही पहला काम उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ डाला जिस पर साइन करके वो 60 मिलियन यूरो में हवाई जहाज खरीदना चाहते थे। नहीं चाहिए हवाई जहाज, तो फिर क्या फैसला लिया भाई इस महान फुटबॉल खिलाड़ी ने? अपनी मां की एक बात पर अपना फैसला बदल लिया, वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया, हवाई जहाज खरीदने का फैसला बदल दिया और उन्होंने फिर 100 स्कूल बसें खरीदी, कोचेस खरीदी और भाई वो उन स्कूलों को दी जहां से बच्चे बहुत दूर दूर तक स्कूल जाया करते थे पैदल चल के। मां कहती थी बारिश हो, तूफान हो, बर्फ गिरी हुई हो, कड़कड़ाती धूप हो, मैं पैदल जाती थी स्कूल। आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे जाते हैं पीठ पर लादे कई कई किलोमीटर का रास्ता तय करके। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बहनों भाइयों खुद ही कहते हैं वो 100 बसेस खरीदी, उन स्कूलों को दी जिनके बच्चों के उनको बहुत दूर से आना पड़ता था स्कूल में, और दूर दराज के बसें इन गाँव में जब स्कूली बच्चों के लिए बसें पहुंची तो बच्चों की खुशी का ठिकाना न था। माँ बाप की तो आंखें छल छला रही थी, स्कूल के टीचर जो है रोनाल्डो का शुक्रिया अदा कर रहे थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, महान फुटबॉल खिलाड़ी की महानता तब साबित होती है जब वो अपना हवाई जहाज खरीदने का फैसला बदल के स्कूली बच्चों के लिए बसें खरीदते हैं और फिर कहते हैं अपनी माँ के पास जाके, माँ मैंने हवाई जहाज खरीदने का फैसला त्याग दिया है, बसें खरीदी हैं स्कूलों के लिए। मां की आंखें छलछलाई। क्रिस्टियानो कहते हैं कि हवाई जहाज खरीद के शायद मुझे वो खुशी नहीं मिलनी थी। छोटे छोटे बच्चों के होठों पर तैरती मुस्कुराहट मुझे बेहद खुशी दे रही थी। मेरी अपनी माँ की आंखें छल छला रही थी, मानो बता रही थी कि बेटे तूने बहुत महान काम किया है। स्कूली बच्चों की आंखों में चमक देखकर उनके टीचर्स और उनके माता पिता की भाई होठों पर मुस्कुराहट देखकर कहते हैं, वो खुशी मिली मुझको जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। उसमें पता नहीं कितने हवाई जहाज खरीदे जा सकते हैं, जो मूल्य उन मुस्कुराहटों का है, उन खुशियों का, छोटी छोटी खुशियां। वो खुशी मिली है बच्चों को स्कूली बसें दे करके जिसकी कोई कीमत कभी भी अदा नहीं की जा सकती।

0: चिंतन,
1: आज का चिंतन, आज का विचार, अपने लिए हवाई जहाज खरीदने का फैसला बदल कर उन छोटे स्कूली बच्चों के लिए बसें खरीदी। 100 बसेस फॉर स्कूली चिल्ड्रन हु वर ट्रैवलिंग फार टू गो टू द स्कूल टू रिसीव एजुकेशन। भाई ये कहानी है, सच्ची कहानी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, महान फुटबॉल खिलाड़ी। और अब देखिए हमारे चिंतन के श्रोता जो हैं, आज के चिंतन की प्रशंसा लिखते हुए क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तस्वीरें भेज रहे हैं। कहते इस महान खिलाड़ी पर हमें गर्व है। सुनीता जी आपने बड़ी अच्छी फोटो भिजवाई है रोनाल्डो की, थैंक यू वेरी मच। अर्जुन जी कहते ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व हैं जो आदर्श फैसला लेते हैं अपनी जिंदगी में, जो दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाता है। ज्योति और गिरीश शाह, अर्जुन जी, वत्सला जी, वत्सला कहती हैं आज परमा एकादशी का प्रणाम, थैंक यू वत्सला जी। भारती जी आपको चिंतन पसंद आया, जगदीश जी बुशी में सुन रहे हैं। महेंद्र पटेल क्रॉयडन में, शहर फतेह एजाज चशम में, उल्लास टोरंटो में, कनाडा में सुन रहे हैं। हरविंदर जी थैंक यू वेरी मच। अरुणा और भूपेंद्र पटेल, निर्मला राजीव पटेल पम्मी सलाव में, थैंक यू वेरी मच, चिंतन बहुत अच्छा लगा आपको। मानसी महेंद्र बजारिया हैरो में, हिना रानी स्लाव में, सलमा मेडस्टोन कैंट में, सत्यनारायण सैनी भारत में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू वेरी मच। भाई जितने भी हमारे चिंतन के श्रोता हैं उन सबका बहुत बहुत आभार, और आपकी ये प्रशंसा मैं भगवान दास जी तक पहुंचा दूंगा। भारत से भगवान दास ने भेजा था आज के चिंतन के लिए आलेख। आज से फुटबॉल का महाकुंभ यानी वर्ल्ड कप फुटबॉल का आयोजन शुरू हो रहा है कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में। ये जो है मुकाबला, ये फुटबॉल का वर्ल्ड कप खेला जाएगा, और साहब आज से शुरुआत हो रही है। फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को होगा और हम आपको जोड़े रखेंगे मैचेस के साथ, नतीजों के साथ, टीमों के साथ, उपलब्धियों के साथ। एक बार फिर से भगवान दास जी को धन्यवाद देते हुए आज का चिंतन समेटते हैं। और ये भी बता दें कि चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम का हिस्सा बनता है। चिंतन समाप्त होता है।
0: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यू के आज का रेट बता रहे हैं, और भाई चाह रहे हैं कि आप पैसे भिजवाएं अपनों को। टुडेज रेट इज फॉर 1 pound दे आर गिविंग 127.6 इंडियन रुपीज, 127.60 रुपए का रेट चल रहा है। लेकिन इतना ही नहीं, इसके साथ कुछ और भी है भाई स्पेशल ऑफर। जून के महीने के दौरान सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी in to win a 75 pounds voucher every day. Yes, and when you send over 1,000 pound, only 75 pounds voucher you can win, but if you send more than 2,000 pounds or 2,000 pounds you have a chance to win 1 gram gold coin every week. Terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Ye hai Leica Gold.
0: Leica Gold.
4: Leica Radio.
2: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
1: बताया ना भाई, फुटबॉल का महाकुंभ है ये, बिगेस्ट वर्ल्ड कप इन द हिस्ट्री स्टार्ट्स टुडे ऑन 11th of June, और ये पहला जो ओपनिंग सेरेमनी और पहला मैच जो है वो मेक्सिको में खेला जाएगा। ये इतना बड़ा मुकाबला है, कहते हैं इतिहास में शायद अब तक के जितने भी वर्ल्ड कप हुए उनमें सबसे बड़ा साबित होगा। 48 टीमें एक्शन में होंगी और फाइनल खेला जाएगा 19 जुलाई को, और हम लगातार आप तक स्कोर के आंकड़े पहुंचाते रहेंगे। तो क्या होता है पहले मैच में, भाई सुनते रहिएगा लाइका रेडियो नेटवर्क, यहां से आपको हर खबर मिलेगी।
2: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
3: Leica Gold.
5: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
6: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
5: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
6: And you didn't pay those massive roaming charges?
5: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
7: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
8: Gold Band London teams up for the Atif Aslam concert in association with Leica Radio Network. For you to win a 5 gram gold coin, if you've bought a group of 5 tickets or more to the concert, you could be in with a chance to win this golden prize. Just attend on the night and wait for the host to announce the ticket number or your name. If it's yours, you'll be walking away richer thanks to Gold Bank London. Atif Aslam, live at the O2, Sunday the 14th of June. T's and C's apply.
9: Khakra crunch, bhakri munch, chikki sweet, papad beet, pickles heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
10: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
9: Jaimin Foods desi cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
11: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मड़शे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 0203-773-6333 मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा.
12: Discover Malta and Gozo with a Twin Center Island Escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
13: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
14: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
15: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
13: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
14: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
16: Feel the fun. Play Ojo.
15: 18 plus, gamble aware.

0: Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits.
1: बैक टू बैक संगीत में दो गीत हमने परोसे आपको भाई चिंतन के बाद। ये दो गीत सुने, एक किशोर कुमार की आवाज में था और उससे पहले मुकेश और लता जी गा रहे थे फिल्म प्रेम कहानी का गीत, फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं, ये करें कि किसको घायल, ये तो खुद ही घायल होते हैं बेचारे।
2: ये है Nykaa Gold, 10:35 AM.
0: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

दिल का हाल बता देता है चेहरा। हाँ, दबी दबी सी कोई चाहत हृदय में है, सीने में धड़कता दिल कुछ छुपाए हुए है, कुछ दबाए हुए है, वो होठों पर धीरे धीरे आ रहा है। पता है क्यों मुस्कुरा रहा है चेहरा?

साजन साजन पुकार रही है गलियों में, कभी फूलों में ढूंढती हैं कभी कलियों में। अरे मैडम जरा पड़ोसन के घर में भी ताक झांक कर लिया करो। लता जी की आवाज में यह गीत हमें खबरों के नजदीक ले आया है।

0: From Sky News, I'm Kat Suave.
1: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group. Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
2: Very good afternoon to you. Well, weather-wise, this afternoon will be cloudy. A band of rain will move in from the west, but this will turn patchier and lighter later in the day. भाई हवाएं तो चलेंगी, लेकिन शाम से पहले कहते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए धूप सेवन करने को मिलेगी. मैक्सिमम टेम्परेचर आज रहेगा 16 डिग्री सेल्सियस.
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
3: मनोरंजन विद रवि शर्मा.
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
4: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
5: Travel Hub.
4: At all protected.
1: Leica. Feel good classics all day. This is Leica Gold.
2: लाइका रेडियो नेटवर्क पर ये लाइका गोल्ड के कार्यक्रमों का हिस्सा मनोरंजन है विद रवि शर्मा. यस दैट्स माय नेम. और मैं भाई प्रोग्राम के ये तीसरा और अंतिम दौर शुरू करते हुए बता देना चाहता हूँ कि आपा आपा किसे तो काटना ही है कि हाँ

0: आज फिर तुम पे प्यार आया है। कल भी आया था, परसों नहीं आया था भाई, वो अल्टरनेटिव डेज में आता है। अनुराधा पोडवाल और पंकज उदास गा रहे थे गीत। और इससे पहले प्रोग्राम के इस भाग की शुरुआत करते हुए हमने हम किसी से कम नहीं फिल्म की वो कव्वाली सुनवाई थी मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। भाई कल जैजीम शर्मा से मुलाकात हुई और भाई पता लगा कि कंठ में उनके भी सरस्वती निवास करती हैं। जैजीम क्या बात है भाई, बिना किसी साज के, बिना किसी भाई माइक के, और जो गुनगुना करके आपने सारे लाइका रेडियो नेटवर्क के स्टाफ को आनंदित किया ना, और यू डिजर्व लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अप्रिसिएशन जैजीम। नाश्ता रेस्टोरेंट में कल मीटिंग थी भाई, सब मुलाकात हुई, सारे प्रेजेंटर्स इकट्ठे हुए, अधिकारी इकट्ठे हुए, सेल्स टीम वाले भी पहुंचे, और शानदार एक कभी कभी मिलना जुलना होता है सबका इकट्ठे होते हैं, वरना तो अपने टाइम पे आकर के शो करके फिर इधर उधर हो जाते हैं। तो कल सबसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा वो एटमोसफियर और वो खाना, नाश्ते वालों का भाई भोजन भी, वो मक्की की रोटी, सरों का साग, जवाब नहीं जसलीना। थैंक यू वेरी मच जसलीन, फिर कब बुला रही हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यू के आज क्या रेट दे रहे हैं, लेट्स फाइंड आउट।
1: एसबीआई यूके मनी टॉक, सेंड मनी टू इंडिया विद कॉम्पिटिटिव रेट्स विद योनो एसबीआई यूके ऑनलाइन एंड वाया द एसबीआई यूके ब्रांच।
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके गिविंग 127.6 रुपीज़ फॉर वन पाउंड टुडे एट दिस टाइम, दैट्स द मैक्सिमम। लेकिन इसके साथ साथ एक ऑफर चल रही है भाई जून के महीने में, यस सिर्फ इसी महीने, और वो ये है कि अगर आप जून के महीने में 1,000 पाउंड या इससे अधिक भिजवाते हैं तो एवरी डे देर इज़ अ चांस टू विन 75 पाउंड वाउचर, और अगर भाई 2,000 से ज़्यादा भिजवाते हैं तो देर इज़ अ चांस टू विन 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक। Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold. Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
3: Attention meat lovers of Rainer's Lane.
4: This is huge.
3: Thadika Lal is opening in Rainer's Lane on Wednesday the 17th of June. And you are all invited.
4: One day only. Spend just £1 and get up to £50 worth of top brand freebies.
3: But be quick. This golden giveaway is for the first 100 customers only.
4: Doors open at 10 a.m. sharp. 297 Rainer's Lane Pinner. HA55EH. Set your alarms, get there early and don't miss out.
3: Thadika Lal, Rainer's Lane. There is only one.
4: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
5: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
4: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
5: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
4: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
5: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
4: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCNPRA.
3: Gold Bank London teams up for the Atif Aslam concert in association with Leica Radio Network. for you to win a 5 grand gold coin. If you've bought a group of 5 tickets or more to the concert, you could be in with a chance to win this golden prize. Just attend on the night and wait for the host to announce the ticket number or your name. If it's yours, you'll be walking away richer thanks to Gold Bank London. Atif Aslam, live at the O2, Sunday the 14th of June. T's and C's apply.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
7: 105 superhit shows pachi have London ma avi rahyu che ek dhamakedar international Gujarati comedy Jai's Entertainment line avi rahya che Sakhna Rejo husband ji Leena Shah ane Sameer Shah sathe hasya ni full guarantee Fridays 26 June 27 patidar samaj Wembley Park ma ratna 8 vage tickets booking mate visit karo eventbrite.co.uk call karo Videorama athwa call karo Mr. B 07860 280655. Sakhna Rejo husband ji.
8: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
9: No more worries for me or you.
10: Southall Travel, at all protected.
11: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
12: Backstage Siblings, first ever UK performance happening on the 9th and 10th of October 2026 at SKLP. PC Northolt. Get your tickets now at sklpc.com/BSS.
13: Lotto from the National Lottery now gives you 2 chances to win with every ticket. So it could be you, and it could be you. You, and then the same you, again. You. 1 ticket, 2 chances to win. New Lotto. It could be you, and it could be you.
14: See website for Lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or older.
15: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
16: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: और बहनों भाइयों, आप जानते हैं कि इस सप्ताह के कलाकार का नाम है वन एंड ओनली किशोर कुमार। भाई किशोर दा की आवाज में बहुत सारे चुलबुले गीत, वो चटपटे गीत, भाई वो रोमांटिक गीत और भाई कवालियां भी, वो हर तरह के गीत आपने सुने हैं, लेकिन कुछ दर्द भरे गीत भी इस तरह की अभिव्यक्ति लेकर के फिल्मी पर्दे पर हमने महसूस किए कि भाई किशोर दा ही गा सकते हैं ऐसा गायन। तो दुख दर्द किसी का देख करके हृदय पिघल जाए, वो हृदय संत महात्माओं जैसा हृदय होता है।

0: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: किशोर दा इस सप्ताह के आर्टिस्ट हैं भाई, और भी कई गीत सुनेंगे आप उनकी आवाज़ में, लेकिन भाई हमेशा के कलाकार जिसे कह सकते हैं दर्द भरे गीतों के लिए, वो तो स्वर्गीय मुकेश जी हैं।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: कितना भी कंट्रोल करो भाई, जब भी मुकेश जी का कोई गीत मैं बजाता हूँ रेडियो पे, अब मेरा गाना अपने आप निकल जाता है। नहीं, पता नहीं क्या होता है मेरी हालत वो होती है। वो गांव के बाहर एक बाबा रहता था बूढ़ा, जब भी कोई गांव की लड़की विदा होती ना, ससुराल जाती, वो रोते हुए जाती तो अपनी झोपड़ी से निकल के आता और लड़की से लिपट के रोने लग जाता। गांव वालों ने कहा, बाबा ये अच्छा नहीं लगता, देखो लड़की विदा होती है, महिलाएं गले मिल के रोती हैं, सुबकती है, लेकिन आप झोपड़ी से निकल के और लिपट के रोने लग जाते, अच्छा नहीं लगता ये। बाबा ने कहा, मैं क्या करूं, बस मेरा रोना निकल जाता है, किसी भी लड़की को विदा होते मैं देख नहीं सकता बस। गांव वालों ने फैसला किया कि ऐसा करेंगे, एक अठन्नी वो 50 पैसे का सिक्का होता था ना, कि हर बार जब भी कोई लड़की विदा होगी एडवांस में आपको एक अठन्नी दे दिया करेंगे, वो आपके चुप रहने के लिए, वो आपकी झोपड़ी में बने रहने के लिए, बाहर ना निकलने के लिए, वो फीस होगी आपकी हर लड़की की विदाई पर, हर लड़की की विदाई पर एक अठन्नी आपकी, आप प्लीज़ ये ना किया करें, बाहर आकर के लिपट करके रोने लग जाते हैं। बाबा ने कहा ठीक है। अगली बार गांव से लड़की विदा हो रही थी, गीत गाती हुई महिलाएं छोड़ दे जाती हैं गाड़ी तक, भाई गांव के बाहर वो गाड़ी खड़ी थी। अब जैसे ही लड़की उनकी झोपड़ी के सामने से गुजरी, बाबा जी बाहर निकले, वो अठन्नी फेंक के मारी, पकड़ो अपनी अठन्नी, मुझसे नहीं रुका जाता, नहीं रुका जाता भाई, क्या करें, गाना निकल जाता है, क्या करें?
0: ये है Like a Gold.
3: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: भाई भाई में फर्क होता है भाई। भाई का फोन आता है तो भाई घबरा जाता है। भाई बोल रहा हूँ मैं।
1: भाई भाई कहाँ से? दुबई से या मुंबई से
0: या कराची से? कहाँ से बोल रहे हो भाई? अबे गांव से तेरा सगा भाई बोल रहा हूँ, डर काहे को रहा है?

0: मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे। इसके साथ ही भाई एक सूचना भी आप तक पहुंचानी है, बस यूँ कहिए कि याद दिलाना है। और याद क्या दिलाना है कि एक तो भाई वो रागासन, लाइका रेडियो नेटवर्क हैज़ कन्फर्म्ड अ पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागासन, डिटेल्स एट लाइका रेडियो डॉट कॉम। इसके अलावा भाई लाइका रेडियो इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ लेस्टर मेला अगेन ऑन 15th and 16th of August एट एबे पार्क, ऑल्सो द ब्रैडफोर्ड सिटी मेला ऑन 1st and 2nd August एट सिटी पार्क एंड सेंटिनरी स्क्वेयर। तो भाई उन एरियाज में अगर आप हैं तो तैयार रहिएगा मेले में आकर के मुलाकात करने के लिए। साउथ हॉल ट्रेवल, उनका वो संदेश भूल तो नहीं गया, फिर याद दिला देता हूँ। वो कह रहे हैं कि भाई इन गर्मियों में छुट्टियों का प्रोग्राम बनाइए, हमारे माध्यम से घूम के आइए, एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड फ्लाइट्स, होटल्स एंड एटॉल प्रोटेक्शन। 40 वर्षों के हमारे विश्वास का फायदा उठाइए भाई, ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड के विजेता हैं हम। और अगर आप घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं तो हम बुलाना चाहते हैं आपको विजिट साउथ हॉल ट्रैवल, और कॉल 0208 574 8410।
1: Holiday breaks were brought to you by South Hall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
0: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, best service with unbeatable price.
0: At all protected.
2: Visit travelhubworld.com.
3: Can love really be lost? Can home be taken away from someone's heart?
4: ये प्यार जहर की तरह होता है पता? तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता.
5: हमने है इश्क मस्ताना.
3: मैं वापस आऊंगा. A film by Imtiaz Ali.
4: अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 years से देखा तक नहीं.
3: Starring Diljit Dosanjh, Vedanga Raina and Sharvari. Music by A.R. Rahman. Produced by Birla Studios and Applause Entertainment. Main Vapas Aunga in cinemas on the 12th of June.
6: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
7: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
8: High appreciation.
9: In Dubai.
10: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
11: Atif Aslam live in the UK.
10: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
11: Book your tickets now at AXS.
10: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
11: Exclusive radio partner, Leica Radio.
12: Packed for the trip? Gifts? Passport?
13: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
12: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
13: Simzy?
12: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
14: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com.
15: T's and C's apply. इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
16: Hey, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
17: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips, crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
16: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
15: Experience the ultimate escape, 25 unforgettable days across Australia, breathtaking New Zealand and paradise in Fiji. Two departures, November and February. It's the holiday of a lifetime. First 10 bookings get 300 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
18: Be part of a historic grand opening.
19: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
18: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
19: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
18: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
20: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk। टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।
0: किसने मुझे सदा दी, किसने मुझे पुकारा, आवाज देने वाले आवाज दे दोबारा।

एंड देयर गो रफी साहब और लता मंगेशकर ने फिल्म आशा 1980 की फिल्म, उसमें शीशा हो या दिल हो सबसे फेमस गाना है, लेकिन ये गाना किसी से कम नहीं, बारिश का गाना है आशाओं के सावन में।

0: लेकिन इन्होंने हिंदी फिल्में जो बनाई थी, दो गानों के बाद बात करेंगे।
1: Like a gold. Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: TravelHub.
2: At all protected.
1: Leica. Leica Gold. Part of the largest Asian commercial radio network in the UK.

0: तलत महमूद, फिल्म आरजू।
1: दिल मुझे ऐसी जगह ले चल।
2: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: आपने जो गाना सुना वो इसलिए क्योंकि हम एक ट्रिब्यूट कर रहे हैं, ट्रिब्यूट टू द डायरेक्टर राइटर प्रोड्यूसर 113th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ शहीद लतीफ। शहीद लतीफ वॉज एन अमेजिंग पर्सन। इनकी जो टैलेंट थी, इन्होंने जिन लोगों को ब्रेक्स दी, ही लॉन्च्ड देवानंद्स करियर इन द फिल्म आरजू, जिसका आपने गाना सुना अभी। एंड नहीं, इट वॉज फिल्म जिद्दी, आई बेग योर पार्डन, आई कीप सेइंग दैट, बट इट्स जिद्दी फिल्म जिसमें देवानंद की करियर उन्होंने लॉन्च की थी। ये गाना जो मैंने सुनाया वो थी फिल्म आरजू का, स्टारिंग दिलीप कुमार एंड कामिनी कौशल। सो शहीद लतीफ, यू नो, ही, इनकी वाइफ का नाम था इस्मत चुगताई। इस्मत चुगताई यूज टू राइट स्टोरीज। सो हुआ क्या था कि लतीफ जी, ही वॉज बोर्न इन चंदौसी, दैट वॉज यूपी, आगरा एंड ऊध यूपी प्रोविंस में। एंड ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 53 ऑन 16th April 67। नाउ व्हेन ही शिफ्टेड टू बॉम्बे, विच इज़ नाउ नोन एज मुंबई, ही स्टार्टेड हिज करियर विद बॉम्बे टॉकीज, उस जमाने का फिल्म स्टूडियो जो था। एंड देन ही रोट डायलॉग्स। अब अशोक कुमार की आपने फिल्म सुनी है नया संसार 1941, फिर अमिया चक्रवर्ती की अनजान फिल्म 1941 की, ज्ञान मुखर्जी की एक फिल्म थी झूला, ये सब 1941 की फिल्मों की जो डायलॉग्स जो थे वो सब इन्होंने लिखे थे। शहीद लतीफ, देखो कैसे आदमी सीढ़ियां चढ़ता है। इन्होंने राइट एट द बॉटम काम शुरू किया and then it led to his directorial debut with Ziddi on a story which was written by Ismat Chugtai, that is his wife, yes. And the husband and wife duo worked together on many films where Ismat was sometimes a scenarist, a writer, or at times even a producer. Unki wife jo thi, and what shall I say, He married in 1941, Latif and Chugtai. When they got married, they later had two daughters. Ismat Chugtai was born in 1915 and she passed away in 1991. Jab 1991 mein, when she passed away, of course, 1967 mein hi Shahid Latif had expired by that time. Lekin we are remembering the great man himself, who had done so many films for us. Lekin we will always remember the launch of Devanand in Ziddi and the career of Dilip Kumar and Kamini Kaushal got boosted with film Arzu in 1950. So we remember on Laika Gold.
4: Ye hai Laika Gold.
5: Laika Gold.
0: And we got... बारिश की सीजन है, ये आवाज़ सुनिएगा, फिर मैं आपको बात करता हूँ कुछ।

0: पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823. Maharaja Tours presents Diwali Dhamaka 2026. 12-night Diwali or Navratri cruise on MSC Virtuosa. Bhajan jamming, Mehfil nights, Ras Garba, Bollywood entertainment or full-on maza. Spain or Portugal ke sunshine ports, full board cruise or Indian khana included. From only £1,179 per person, visit maharajatours.co.uk ya call 07956 154 846.
1: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
2: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
1: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
2: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
1: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
3: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
4: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
3: ये तो बताओ, कोई पता चला?
5: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून.
3: शाहरुख, तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
6: शीघ्र शीघ्र.
5: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून. टू बुक कॉल 0208-514-5400. बुक ऑनलाइन एट इवेंटब्राइट.
7: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड.
8: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
9: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share, and we give the rest back to you as cashback.
8: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
9: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
8: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
10: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
11: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
10: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
12: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care, available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
13: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
14: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: तोता मैना की कहानी। यहाँ एक तोता है जो खड़ा है लेने के लिए ये माइक्रोफोन मेरे से।
1: आप रूबी के बारे ऐसे
0: रूबी के नहीं, रे नॉट रूबी, इट वाज सैंडी। सैंडी शाह इज कमिंग नेक्स्ट एंड लाइक हर रेडियो मिडलैंड्स पे होंगे राजपतन।
2: Bali Brumbat on Gold Afternoons. Like a gold. Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Coach, Eurostar, your flight. Aap choose karo, apna style. Baki sab, Star Tours experience samhal leta hai. Visit startours.co.uk.

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: भाई जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइक अ गोल रेडियो इन लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। शो का नाम द इवनिंग शो विद अश्विनी। मंडे से फ्राइडे रहता है आपका मेरा साथ शाम 7 से 10 बजे तक। प्रोग्राम का आगाज अपने उदित नारायण की आवाज में, एनएल कायदे की आवाज में, मृत्युदंड इस फिल्म से लिया था, कह दो एक बार सजना। बहुत रिफ्रेशिंग लगता है ये सॉन्ग मुझे। एंड नेक्स्ट वाज कुर्बानी, कुर्बानी किशोर कुमार अनवर एंड अजीज नसन की आवाज़ में कुर्बानी फिल्म से लिया था। जी तो कल आप और मैं कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाए, जैसे कि सैंडी जी ने आपको बताया कि थोड़ी तकनीकी कुछ थी चीज़ें, सॉर्ट आउट हो गया। यस वी आर बैक विद आवर मस्ती। इट्स थ्रिलिंग थर्सडे गाइस। चलो आ गया वीकेंड। कहाँ है मेरे सारे के सारे प्यारे प्यारे छुपे रुस्तम जो मुझे मैसेज नहीं करते। इतना प्यारा व्हाट्सएप का नंबर है हमारे यहाँ पे लगाया गया है, करिए करिए मैसेज करिए। अच्छा असाइनमेंट के लिए रेडी है? परसों मज़ा आया था ना कैसे असाइनमेंट मैंने आपको दिया था। आज का भी ऐसी कुछ रैंडम सा असाइनमेंट है। कल फ्राइडे, कल की मस्ती कल, ठीक है? आज का हिसाब किताब करते हैं हम। तो प्रोग्राम हमने शुरू कर दिया, आप लोगों ने हाजिरी लगाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है। सवाल पूछूं आज का? एंड बिल्कुल ईमानदारी से आंसर चाहिए। हम सब जो हैं हम लोग एशियन कंट्रीज से, तो हमारे नई चीज़ जब भी कोई आती है ना उसके ऊपर का प्लास्टिक नहीं उतरता जल्दी से, फिर चाहे कार हो चाहे रिमोट हो, घर के कुछ फर्नीचर हो। आज का सवाल आप सबके लिए, सच्ची सच्ची बताना, किसके किसके घर में नई चीज़ें आती हैं तो प्लास्टिक बड़े लंबे समय तक रहता है। मेरे घर पे एक लैम्प था, वो लैम्प को आए 5 साल हो गए थे। मैं हमेशा अपने बेटर आपसे कि इसके ऊपर का प्लास्टिक निकालते हैं, इसके ऊपर रहन दो ना, धूल जमेगी, काहे को चेक क्या करना। वन फाइन डे व्हेन आई वेंट टू ऑफिस, मैंने अपनी कैंची उठाई और जो प्लास्टिक कवर था उस लैम्प के ऊपर था उसके ऊपर से कट कट कट कट कट कट सब कट करके फेंक दिया। तो अब आपके घर पर ऐसी कौन सी चीज़ें, रिमोट कंट्रोल पर अगर है प्लास्टिक तो बताइए, सोफे पे रखा रखा है, जहाँ जहाँ जो प्लास्टिक कवर लगे, आज के आज हमें पूरी की पूरी रिपोर्ट यहाँ पे चाहिए। तो हाउस द जोश टीम, तैयार हैं आप लोग सब? चलो यहाँ पे शुरू करते हैं आपकी और हमारी महफिल।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling, you will get up to 127.4 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram of gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.

0: Rebecca Gould.
1: Leica Radio.
0: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
2: ग्रुप ए में मैच हो रहा है मेक्सिको एंड साउथ अफ्रीका के बीच और शुरू होगा 8 बजे. एंड रिमेम्बर, ये आपको जरूर मतलब याद रखना है कि यू कैन गेट 15 मिनट्स का फ्री लीगल एडवाइस विद आर स्पॉन्सर्स रॉक लॉ इफ यू मेंशन लाइका. तो फुटबॉल लवर्स जरा ध्यान दीजिएगा इसकी तरफ.
0: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
3: Gold Bank London teams up for the Atif Aslam concert in association with Leica Radio Network. For you to win a 5 gram gold coin. If you've bought a group of 5 tickets or more to the concert, you could be in with a chance to win this golden prize. Just attend on the night and wait for the host to announce the ticket number or your name. If it's yours, you'll be walking away richer thanks to Gold Bank London. Atif Aslam, live at the O2, Sunday the 14th of June. T's and C's apply.
4: Step into the new grand showroom of Gajul's Couture, Southall.
5: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
4: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
5: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajul's Couture, now open 7 days a week.
4: Gajul's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
3: Attention meat lovers of Rayner's Lane.
6: This is huge.
3: Tariq Halal is opening in Rayner's Lane on Wednesday the 17th of June. And you are all invited.
6: One day only. Spend just £1 and get up to £50 worth of top brand freebies.
3: But be quick. This golden giveaway is for the first 100 customers only.
6: Doors open at 10 a.m. sharp. 297 Rayner's Lane Pinner. HA55EH. Set your alarms, get there early and don't miss out.
3: Tariq Halal, Rayner's Lane. There is only one.
7: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on diwalistory.com.
8: Shri Jagannatha Society, UK, warmly invites you to Rath Yatra 2026, a divine celebration of Lord Jagannath. Saturday, 18 July, subah 10 baje se sham 4 baje tak. Navnath Center, he's UB3 1AR mein. Bhajans, aarti, sacred rath pulling aur prasad ka laab zarur le. Event free hai, lekin registration mandatory hai. Free parking bhi sirf registration ke saath available hogi. Register now at shrijagannath.uk/events/rath-yatra2026. Jai Shri Jagannath.
9: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
10: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
9: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
10: गारंटेड.
9: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल.
10: फोन 0208574 8410.
9: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
11: लंदन में एक महान धार्मिक अवसर यूनिटी इन डिविनिटी प्रेजेंट्स महासोम यज्ञ 14th से 21st जून वुडलैंड स्टैनमोर के टेंपल ग्राउंड्स पर. फ्री एंट्री, सपरिवार अवश्य पधारिए. रोज सुबह 10 से 3 बजे तक यज्ञ और 4 से 7 बजे तक मनोरथ फॉलोड बाय महाप्रसाद. आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वॉलंटियर बनना चाहते हैं या यज्ञ सेवा लेना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर करें. वेन्यू टेंपल ग्राउंड्स वुडलैंड स्टैनमोर HA74LF. फॉर मोर डिटेल्स somyagna.com. कॉल 07932 623852.
12: Are we there yet?
13: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
12: Relax, I've booked the Uber already.
13: But how? My roaming isn't even working yet.
12: I switched to Simzy before we left London.
13: Simzy? Since when are you the tech expert?
12: Since I decided I want a stress-free holiday.
14: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
15: T's and C's apply.
1: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
15: Like a Gold, London का number one Asian retro music station, अब available है Greater London में 10:35 AM पर DAB Digital Radio पर। Alexa पे बोलो play Like a Gold और online सुनो likeagold.com पे। Feel good track brought to you by Dairy Valley.
16: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
17: Yaadon ki baraat.

0: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ, इट्स 45 मिनट्स पास्ट 7. आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. अलबेला मौसम करता है स्वागतम, तो स्वागतम हम करने वाले हैं किसका, क्यों, कहां, कब. हमारे साथ में हमारे अपने कमल जी. कमल जी कैसे हैं आप? कमल प्रभाकर जी आए हैं और हम सभी जानते हैं कि व्हेन इट इज इट्स क्रिकेट इट्स इक्वल टू कमल प्रभाकर. मतलब लंदन में कोई भी क्रिकेट का अगर कुछ इवेंट आ रहा है, क्रिकेट की सीरीज आ रही है, तो कमल जी आते हैं. बताइए कमल जी कैसे हैं आप?
1: गुड इवनिंग अश्विनी जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो.
0: जी
1: तो इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट एट द मोमेंट. तो विमेन का क्रिकेट वो टेम्परेचर चल रहा है सब जगह. T20 का टूर्नामेंट वर्ल्ड कप लंदन में हो रहा है, तो इट्स गोइंग टू बी इन मेनी मेनी डिफरेंट पार्ट ऑफ द इन यूनाइटेड किंगडम. और इतना एक्साइटमेंट चल रहा है कि द टीम्स आर सो स्ट्रॉन्ग, गुड टीम्स. और विमेन क्रिकेट हैज गॉन टू अ नेक्स्ट लेवल, इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स एट द मोमेंट इन द वर्ल्ड.
0: क्या बात है, फैंटास्टिक. एंड वी आर सो एक्साइटेड कि लंदन में भी जब अभी वुमेन्स क्रिकेट होगा, सो आई एम श्योर कि अगर हमें भी मौका मिलता है तो हम तो जाके जरूर देखेंगे और सपोर्ट करेंगे टीम्स को.
1: आपको इनवाइट करेंगे और तो आपको सारा ये नहीं आ सकते तो आपको अपडेट मिलेगा फ्रॉम द ग्राउंड फ्रॉम कमल प्रभाकर.
0: जी
1: ट्यून इन इन गोल्ड यू नो रेडियो एंड यू विल सी एंड लिसन टू द यू नो द एक्चुअल व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम द ग्राउंड अपडेट्स वगैरह और एंजॉयबल. तो आई एम श्योर योर लिसनर्स विल एंजॉय द यू नो अपडेट्स फ्रॉम गोल्ड रेडियो.
0: डेफिनेटली डेफिनेटली. भाई हमारे पास में समय का तकाजा है तो हमारे कमल जी ने हमें बताया है कि आप दुनिया जहां में कहीं पे भी हो लेकिन क्रिकेट का अपडेट आपको मिलने वाला है कमल जी से. सो कमल जी फिर से आएंगे और हमें डिटेल में सारी चीजें बताएंगे, लेकिन अब हम चलते हैं फटाफट आगे.
2: दिस इज लाइक अ गोल्ड. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: For £1 you'll get 127.84 Indian rupee, 372.65 Pakistani rupee, 447.77 Sri Lankan rupee, 164.67 Bangladeshi taka, 83.66 Afghani, 173.62 Kenyan shilling, 1.33 US dollars.
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LAIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: LAIKA Gold.
2: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at 98.51 pence per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: किशोर कुमार फैंस ध्यान से सुनिए जी. गेट रेडी फॉर क्रेजी फॉर किशोर, अ स्पेशल म्यूजिकल नाइट फीचरिंग जॉय, इंद्रायणी, संजय विद हिरनल एंड 515 बैंड. इट टेक्स प्लेस ऑन फ्राइडे 19 जून एट द प्रिंस रीजेंट होटल चिगवेल एसेक्स. टिकट्स अवेलेबल एट eventbrite.co.uk और कॉल 0208514 5400. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका गोल्ड रेडियो. और बस घड़ी ये कह रही है कि अभी इस आवर का आखिरी गाना कौन सा सुना रही हो अश्विनी. आ गले लग जा, 1973 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, उस फिल्म से बहुत ही बेहतरीन गीत लिया है आप सबके लिए किशोर कुमार की आवाज़ में. वॉल्यूम आप रखना चाहते हैं रख लीजिए. थ्रिलिंग थर्सडे भाई, आ गया वीकेंड, आपका हमारा मस्ती भरा समय शुरू हो जाएगा थोड़ी देर से.
2: Ashwini, brightening up your weeknights. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.
4: Can love really be lost? Can home be taken away from someone's heart?
5: ये प्यार जहर की तरह होता है पता? तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता.
4: मैं वापस आऊंगा, a film by Imtiaz Ali.
5: अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 years से देखा तक नहीं.
4: Starring Diljit Dosanjh, Vedanga Reina and Sharvari. Music by A.R. Rahman. Produced by Birla Studios and Applause Entertainment. Main Vapas Aaunga in cinemas on the 12th of June.
6: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
8: Chawal ho best, sab kare test. Disha rice ka hai zamana.
9: Disha Basmati Rice. Disha Rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carries, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Kenton Road. Disha Rice, come down and taste the difference.
10: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
11: Atif Aslam live in the UK.
10: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
11: Book your tickets now at AXS.
10: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
11: Exclusive radio partner, Leica Radio.
12: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
13: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
14: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
15: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
16: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019 238 83100. Atoll protected.
17: From breathtaking wedding jewellery to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewellers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewellers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
18: The Evening Show with Ashwini.
19: Leica Gold.
20: This is Leica.

0: वेलकम, दिस इज द सेकेंड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी. मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. 8:14, इट्स 14 minutes past 8, 11th of June. थ्रिलिंग थर्सडे का गीत लेके हाजिर हो गए हैं इस सेकेंड आवर में. कैसा रहा आपका दिन, कैसा रहा पूरा सप्ताह, ये मैं आपको पूछूंगी कल, क्योंकि आज थर्सडे है. तो फ्राइडे का तो आप जोश जानते हैं ना, कि कैसे हम सब होश खो बैठते हैं जब आ जाता है यहाँ पे पूरा कैची बीट्स वाला म्यूजिक. पैर थिरकाते हुए आप लोग थक जाते हैं टूवर्ड्स द एंड. एवरी टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल इज, अश्विनी आज क्या खा के आई हो, मीठा मिठोरी हो ना. जी चलिए, तो अब नेक्स्ट ट्रैक जो सुनाने वाली हूँ उसके पहले थोड़ी सी बातचीत, क्योंकि आप और हम हैं एक म्यूजिकल फैमिली, और ऐसा होता ना कि शाम में अपनी फैमिलीज के साथ बैठ के हम लोग गपशप करते हैं. तो अपने एक्टिंग के जॉब से रिलेटेड मैं पिछले 2-3 दिनों से जो जॉब कर रही हूँ वहाँ पे मेरी मुलाकात कई सर्जन्स के साथ में हुई है. और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि कितने भी बड़े ओहदे पे कोई इंसान हो, कितने भी बड़े पोजीशन पे हो, कितना भी पैसा हो, एवरीबडी वांट्स टू बी सीन एंड हर्ड. और ये जब मैं लोगों से गुफ्तगू करती हूँ, जब मैं उनसे गपशप करती हूँ, तब मुझे ध्यान में आता है. जब हम ट्रेन्स में ट्रैवल करते हैं, जब ट्रैफिक लाइट पे रुकते हैं रोड क्रॉस करने के लिए, तो सी आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन ना, मैं एक स्मॉल टाउन गर्ल हूँ. एंड उस टाइम पे जब अकोला में जब मैं स्टार मूवीज़ वगैरह जो होती थी उस टाइम पे, जब मैं मूवीज़ देखती थी रिलेटेड टू न्यूयॉर्क और लंदन और बिग सिटीज़, तो होता था ना ट्रैफिक लाइट पे लोग रुके हैं एंड पूरी भीड़ साथ में चलती है, तो मुझे बड़ा फैसिनेशन होता था बचपन में इस चीज़ का, कि अरे ऐसे मैं कब चलूँगी, है ना. एंड यू डोंट इवन नो कि आगे आप लाइफ में कहाँ जाने वाले हो, क्या करने वाले हो. सो विथ मी इट हैपेंड कि हाँ चलो भाई, ये एक्सपीरियंस करने का मौका तो यहाँ पे इस शहर में आके मिला. पुणे में भी ऑब्वियसली जब थी तब अलग बात थी, लेकिन यहाँ का बिकॉज इट वॉज मोर ऑफ किसी अब्रॉड कंट्री में जाके क्या एक्सपीरियंस होगा, तो उस भीड़ का हिस्सा बनना ना मुझे अच्छा लगता है. उस भीड़ में कितने सारे लोग कितनी सारी कहानियाँ लेके घूमते हैं, कोई अपना जोश खो बैठता है, कोई अपना होश खो बैठता है, अपने सपनों के पीछे भागते हैं, कुछ बस दिन निकाल रहे हैं, कुछ जो है वो बिल्डअप कर रहे हैं अपनी फाउंडेशन. बहुत अच्छी लगती है मुझे वो एनर्जी. और उस एनर्जी में जब मैं भी उस एनर्जी का एक हिस्सा बनती हूँ, उस भीड़ का हिस्सा बनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है. रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो रोज़ ट्रैवल करते हैं कहेंगे अरे अश्विनी तुम तो कभी कभार शायद जाती हो इसलिए तुम्हें अच्छा लगता है, पर अगर आपकी ज़िंदगी में रोज़ अगर वो भीड़ भी लिखे ना तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि कई लोग जो हैं ऐसी भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं लेकिन नहीं बन पाते. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस.
1: फील गुड क्लासिक्स ऑल डे लाइक अ गोल्ड.

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
2: For £1, you'll get 127.4 Indian rupee. And remember, when you're sending money to India via SBI, when you send money to India, you can send it via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram of gold coin every week when you're sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposits. Lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: तो भाई फिर से जरा ध्यान से सुन लीजिए. लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो नेटवर्क टीम सब विद तारिक हलाल फॉर द ओपनिंग ऑफ देयर न्यू रेनर्स लेन ब्रांच ऑन वेंसडे 18 जून, लोकेटेड एट 297 रेनर्स लेन, पिना HA55EJ. The first 100 customers will have the chance to claim a golden ticket on first come first serve basis. Spend £1 and receive £50 worth of food items. Terms and conditions apply. Leica Radio Network will also be broadcasting live from there from 10 AM until 1 PM. अच्छा, मैंने अभी जो गीत सुनाया तो ढल गया दिन, जाने दो, जाने कहीं नहीं जा रही भाई. अभी 8:23 हुए हैं, इतनी जल्दी कहाँ निकल जाऊँगी अभी. अभी तो माहौल हमारा सेट हुआ है, हमारी महफिल जो है अभी तो जवां हो रही है. बैक टू बैक आपको गीत भी सुना दिए, अब उसके बाद में हम चलेंगे आगे. और महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये वाला गीत, 70s वाले बच्चे बहुत खुश होने वाले हैं अभी.
0: ये है
3: लाइका गोल्ड.

0: इमोशन ऑफ द डे,
1: इमोशन ऑफ द डे,
2: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
4: What a lovely track. लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में आया सावन झूमके से सुनाया आपको थ्रिलिंग थर्सडे का इमोशन ऑफ द डे. मिला लेते हैं घड़ियां एक बार, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. It's 38 minutes past 8. आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. टेम्परेचर्स जो हैं अपना अपना रंग दिखा रहे हैं. कभी कभी मौसम जो है इतना बेईमान हो जाता है, कभी धूप कभी छांव, कभी गर्म कभी ठंडा. तो ये वियर्ड सा मौसम जो होते जा रहा है, ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग है और ग्लोबल वार्मिंग हमारे ही तो कर्म है. कहते हैं कर्म अच्छे करो तो उसका फल भी अच्छा ही होता है. जैसे कि अब इस कंट्री में आने के बाद जब मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस लिया 4 साल पहले और किसी के अच्छे कर्म की वजह से मैंने भी कुछ सीख लिया था. तो मैं अपने 4 लेन्स पे ड्राइव कर रही हूँ एंड व्हेन आई वाज चेंजिंग लेन आई वेंट इनटू अ रॉन्ग लेन. और मैंने जैसे ही लेन चेंज की तो मुझे किसी ने जगह दे दी कि भाई आप अपनी गाड़ी लेके आ जाइए इस लेन में. सो जब एक कोई अच्छी डीड करता है, एक अच्छा कर्मा करता है, तो उसका वो जो थ्रेड या लूप जो है वो शुरू हो जाता है, वो लूप शुरू हो जाता है. तो आप भी कितने अच्छे से, फिर आप कहीं किसी लेन में और कोई दूसरा इंसान आ रहा है तो आप भी उसे उस लेन में जगह देते हो. किसी एक के अच्छाई की वजह से उसके बाद में जो लोग उसको फॉलो करते हैं ना, वो अपने आप अच्छे अच्छे कर्म करते चलते हैं, है ना. गिविंग बैक, अभी गिविंग बैक पे मुझे हमेशा लगता है कि देखिए हम लोग सांस अंदर लेते हैं तो सांस भी तो बाहर देते हैं. तो सिर्फ लेना, नो, डोंट बी अ रिसीवर इन लाइफ, ओके, बिकम अ गिवर इन लाइफ. कि लोगों को देना भी कुछ सीखिए. प्यार, मोहब्बत, वादा, ये किसी को अगर वादा किया ना तो वो वादा निभाओ प्लीज़. किसी को साथ देने के लिए कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं तो साथ रहो, है ना. ये सारी चीज़ें देखो ना, कर्म के नाम के नीचे मैंने ड्राइविंग बता दिया, मैंने कैसे लेन चेंज कर ली वो बता दिया, किसी ने मुझे जगह दी तो वो फिर मैंने लूप कैसा शुरू कर दिया, है ना. ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन छोटे छोटे रिमाइंडर्स होते हैं. वो रिमाइंडर्स जो आप लोग मुझे मैसेजेस के द्वारा यहाँ पे देते रहते हैं कि अश्विनी शाम हो गई है, डिनर खा रहे हैं, कहीं से कोई वहाँ से पकौड़े बन के हमें खिला रहा है, कोई सैलड की फ़ोटो देख रहा है. आज मैं भी होशियार बन गई, मेरे पास में भी सोया चंक्स का राइस था, वो मैंने खा लिया शो शुरू होने के पहले. सलाइवरी ग्लैंड्स एक्टिव हुए, बिल्कुल होते हैं यार. यम्मी यम्मी डिशेस के पिक्चर्स भेजते हो.
2: ये है लाइका गोल्ड, अश्विनी इन फॉर अनीसा नासिर फॉर द इवनिंग शो.
5: ये है लाइका गोल्ड.
6: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.
4: एपिसोड नंबर 20 इज आउट. अनुज राडिया ने इसे होस्ट किया है और टॉपिक क्या है भाई, बॉलीवुड रिवाइंड, अ थ्रोबैक टू 2000 एरा. वाज दिस डेकेड अ परफेक्ट मिक्स ऑफ स्टार्स, सॉन्ग्स एंड रोमांस? डिड द एरा रीडिफाइन इंडियन सिनेमा फॉर एन आर आईज? सो ये आप देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट, अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स.
2: लाइका एक्स्ट्रा. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.
7: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
8: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
7: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
8: विजिट TravelHubWorld.com.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
10: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 01200-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
9: High appreciation.
10: In Dubai.
9: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
0: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
9: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
0: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
9: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
0: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
9: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
11: Hi, hello, public demand. But me Premier League at like a PPL, yes, from 3rd July till 12th of July. Wow! And this is being presented by Pankaj Soda Galaxy Shows. Yaad rakhjo.
9: Patni Premier League shows at Risley, Alberton, East and South London, Blue Room, Leicester. For more information, call Deepa on 07947561947.
12: Aa September, Paris ma itihas lakhai rahyo che.
9: BAPS Mandir no opening and Star Tours tamne lai jai rahyo che aa pavitra yatra par.
12: Europe na 3-9 divas na tours.
9: France, Switzerland, Italy and Germany saathe.
12: Darshan pan ane Europe pan.
9: Seats jaldi bharai rahi che. Aaj ij book karo Star Tours saathe.
12: Call 02089002323. The Star Tours.
9: Travel once and you will travel again and again.
13: Can love really be lost? Can home be taken away from someone's heart?
14: ये प्यार जहर की तरह होता है, पता? तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता.
15: अमन है इश्क मस्ताना.
13: मैं वापस आऊंगा. A film by Imtiaz Ali.
14: अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना, जिसे 78 years से देखा तक नहीं.
13: Starring Diljit Dosanjh, Vedanga Reina and Sharvari. Music by A.R. Rahman. Produced by Birla Studios and Applause Entertainment. Main Vapas Aunga in cinemas on the 12th of June.
16: Backstage Siblings, first ever UK performance, happening on the 9th and 10th of October 2026 at SKLPC Northolt. Get your tickets now at sklpc.com/BSS.
2: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Ashwini, brightening up your weeknights.

0: Leica Gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: For £1, you'll get 128.05 Indian rupee, 373.26 Pakistani rupee, 447.84 Sri Lankan rupee, 164.84 Bangladeshi taka, 84.65 Afghan afghani, 173.94 Kenyan shilling, 1.34 US dollars.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. With the UK's biggest Asian hits. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, poojasweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £98.51 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, poojasweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
1: मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 51 मिनट्स पास्ट 8। आप सभी ने ट्यून इन किया है Leica Gold Radio in London and Leica Radio in Greater Manchester. This is the evening show with Ashwini. Good news around the world, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता लेकिन हम बात करते हैं. So a 12-year-old girl, 12 साल की एक बच्ची ने स्कॉटलैंड में, she has solved a math problem that had been stumped professional mathematicians for decades. She did it during a lunch break. My God. Wild tigers have been such a strong comeback that India now has more tigers than the rest of the world combined, and they are almost extinct 50 years ago. They were actually. Okay, and a 103-year-old woman just became the oldest person to ever skydive. When asked why, she said she has been wanting to do it since it was 100, but she kept on putting it off. नहीं, मैं बाद में जाऊँगी, मैं बाद में जाऊँगी. एंड बाद में जाके उन्होंने जो है स्काई डाइविंग कर लिया. स्काई डाइविंग एक्चुअली मुझे भी करनी है यार, है ना? बकेट लिस्ट होगी ना आप सबकी भी, कौन से काम रहे, फटाफट बकेट लिस्ट बनाओ, बात करेंगे उसके बारे में.
0: Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show. Leica Gold.
3: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
4: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
5: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
7: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस.
8: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड. अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड. दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
9: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
10: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
9: Jaimin Foods Mango Pulp available now.
11: Gadbad gotala che, problems mota che, par badu alright che.
12: Me chale back to back 3 movies joy li thi.
11: Get ready for a full on comedy chaos with Veeraj Ghelani and Umang Vyas in the movie Badu Alright Che.
12: बेहतर कलाकार पाचो आई जैसे पच्ची बदु ऑलराइट थे जैसे
11: इन सिनेमास ऑन 12th ऑफ जून। फॉर मोर इन्फो विजिट बकरानिया मीडियाज इंस्टाग्राम हैंडल।
13: एवू लागे छे के पिक्चर चल छे।
14: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com। कॉल 02087677627।
0: दिस इज द Leica रेडियो नेटवर्क। यू हर्ड, द Leica ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ Leica रेडियो एंड Leica गोल्ड इज वंस अगेन द नंबर 1 एशियन कमर्शियल ग्रुप इन ग्रेटर लंदन। एडवर्टाइज टुडे अक्रॉस आवर 4 स्टेशंस on 0207-132-1458 or sales@leicamedia.co.uk.
4: The Evening Show with Ashwini.
0: London, Midlands, Manchester. This is the Leica Radio Network.

0: The Evening Show with Ashwini.
1: Welcome, this is the third hour of The Evening Show with Ashwini. पहला गीत आपको सुनाया परंपरा फिल्म से लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ में. सेकेंड गीत आपको सुनाया तीसरी कसम फिल्म से दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए. और सच में हो जाता है ना ऐसे कभी कि कुछ चीज़ें हम चाहते नहीं कि हमारे लब पे आए क्योंकि आँख तो भर आएगी, है ना, हो जाती है ऐसी कुछ बातें. लेकिन अब ये जो चीज़ आपको मैं बताने वाली हूँ, जो बात बताने वाली हूँ, इससे आंखें भरनी आएंगी, उल्टा आप खुश होने वाले हैं. लाइका रेडियो नेटवर्क टीम्स अप विद तारिक हलाल फॉर द ओपनिंग ऑफ देयर न्यू रेनर्स लेन ब्रांच ऑन वेंसडे 17 जून, लोकेटेड एट 297 रेनर्स लेन, पिनर HA55EJ. The first 100 customers will have the chance to claim a golden ticket on a first-come, first-served basis. Spend £1 and receive £50 worth of food items. Terms and conditions apply. Laika Radio Network will also be broadcasting live from there from 10 a.m. until 1 p.m.
0: Ashwini, brightening up your weeknights. This is the Laika Radio Network across London, Manchester and the Midlands. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: For £1, you can get up to 127.4 Indian rupee. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram gold coin every week when you are sending over £2,000. Terms and conditions apply.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit SBI.uk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: The Evening Show with Ashwini.

0: Leica Gold.
1: Leica Radio.
2: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
3: ग्रुप ए में मेक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच मैच चल रहा है, जिसमें मेक्सिको ने एक गोल दागा है, साउथ अफ्रीका अभी भी जीरो पे. और डोंट फॉरगेट, यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रॉक लॉ इफ यू मेंशन Leica.
2: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: I'm literally crying.
5: Same, but my bladder can't take these laughs. I may have to leave.
6: Wait, try one of my always discreet maximum protection pants. Total game changer when the floodgates open up.
5: Seriously?
6: It gives me complete peace of mind, even for my heaviest bladder leak surprises. Go try one on.
5: Fair play. And now I can stay until the last gag.
6: Try Always Discreet's new maximum protection pants for heavy bladder leaks.
2: This is Ash Winnie, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
7: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
8: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
7: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
8: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
7: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
9: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
10: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
11: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
10: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
11: गारंटेड.
10: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल.
11: फोन 0208574 8410.
10: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
12: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
13: Shri Jagannatha Society UK warmly invites you to Rath Yatra 2026, a divine celebration of Lord Jagannath. Saturday, 18 July, subah 10 baje se sham 4 baje tak, Navnath Center, He's UB3 1AR mein. Bhajans, aarti, sacred rath pulling aur prasad ka laabh zarur le. Event free hai, lekin registration mandatory hai. Free parking bhi sirf registration ke saath available hogi. Register now at shrijagannath.uk/events/rath-yatra2026. Jai Shri Jagannath.
14: Can love really be lost? Can home be taken away from someone's heart?
15: ये प्यार जहर की तरह होता है, पता? तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता.
16: हमन है इश्क मस्ताना.
14: मैं वापस आऊंगा. A film by Imtiaz Ali.
15: अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं.
14: Starring Diljit Dosanjh, Vedanga Reina and Sharvari. Music by A.R. Rahman. Produced by Birla Studios and Applause Entertainment. Main Vapas Aunga in cinemas on the 12th of June.
2: Leica Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par. DAB Digital Radio par Alexa pe bolo play Leica Gold. Aur online suno leicagold.com pe. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
17: एक

0: ये है लाइका गोल्ड।
1: होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
2: फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

खफा हो के चेहरा छुपा ले, मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट travelhubworld.com
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाएं 0208-839-0880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
3: ट्रांसफर मनी होम एंड टर्न Every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: 105 superhit shows pachi have London ma avi rahyu chhe ek dhamakedar international Gujarati comedy Jay's Entertainment line avi rahya chhe sakhna rejo husband ji. Leena Shah ane Sameer Shah saathe haasya ni full guarantee. Fridays 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मां रातना 8 वागे टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk कॉल करो वीडियो रामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 सखना रहजो हस्बैंड जी
8: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए
9: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों
8: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी
9: गारंटेड
8: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे साउथ हॉल ट्रेवल
9: फोन 0208574-8410
8: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574-8410 एट ऑल प्रोटेक्टेड
10: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
11: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
12: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
10: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
11: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
13: Feel the fun. Play Ojo.
14: 18 plus gamble away.
0: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत पुराने मगर सदाबहार गीत